आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवसमे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीम्।

तुम्हें धनम अग्निर्धनम वायुर्धनम सूर्योधनम वसु धनमिंद्रो बृहस्पतिर्वरुणो धनमश्विना वैनतेय सोमं पिब सोमं पिब।

मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु।

श्रोताओं अब सुनिए संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने और इसे गाया है लता मंगेशकर जी ने।

भक्ति सुधा इंटरनेट रेडियो स्टेशन पर सुनिए ईश्वर भक्ति के अमीट स्वरों का हिंदी भक्ति संगीत कार्यक्रम भक्ति सुमन। भक्ति सुमन सुनिए हर दिन दोपहर 2:30 बजे। श्रोते हो, भक्ति सुधाच्या इतर सर्व कार्यक्रमांची आणि उपक्रमांची माहिती घेण्यासाठी भक्तिसुधा.co.in या आमच्या वेबसाईटला अवश्य भेट द्या।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना, इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन और साजन मिश्रा जी का।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने।

आइए सुनते हैं हेमंत कुमार जी के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण जी का गीत। स्वर है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी।

मालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतव समे गृहे निच देवी मातरम् श्रियं वासय मे कुले आर्द्राम्बुज

0: अग पर अस का
1: मोडकच घर तुटकच छप्पर
0: मग अस ना
1: अव मोडकच घरन तुटकच छप्पर
0: मग राह की त्यात
1: अव पण राहायला जा।

श्रोताओं अब सुनिए संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने और इसे गाया है लता मंगेशकर जी ने।

धरणाय महानमस्याय स्वरूपाय दीर्घारिष्टं विनाशय विनाशय नाना प्रकार भोग प्रदाय मम। आपण जेव्हा दुसऱ्या करता म्हणतो त्यावेळेला त्याचे नाव उच्चारून यजमानस्य असं म्हणून पुढे म्हणावे। सर्वारिष्टं हन हन पच पच हर हर कच कच राजद्वारे जयं कुरु कुरु व्यवहार लाभं वर्धय वर्धय रणे शत्रुं विनाशय विनाशय वीनापत्ययोगं निवारय निवारय संत्युतिप्तिं कुरु कुरु पूर्णम आयुः कुरु कुरु स्त्री प्राप्तिं कुरु कुरु हुं फट स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते विश्वमूर्तये नारायणाय श्री पुरुषोत्तमाय रक्ष रक्ष युष्मदधिनं प्रत्यक्षं परोक्षं वा अजीर्णं पच पच विश्वमूर्ते अरिन हन हन एकाहिकं द्व्याहिकं त्र्याहिकं चातुर्थिकं ज्वरं नाशय नाशय चतुरधिकान वातान अष्टादश क्षयरोगान अष्टादश कुष्ठान हन हन सर्वदोषान भंजय भंजय तत्सर्वं नाशय नाशय शोषय शोषय आकर्षय आकर्षय मम शत्रुं मारय मारय उच्चाटय उच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तंभय स्तंभय निवारय निवारय विघ्नान हन हन दह दह पच पच मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय विद्रावय विद्रावय चक्रं गृहीत्वा शीघ्रमागच्छा गच्छ चक्रेण हन हन परविद्यां छेदय छेदय चतुर्शीति चेटकान विस्फोटय नाशय नाशय वातशूला विहत दृष्टिन सर्प सिंह व्याघ्र द्विपद चतुष्पदान आपरे बाह्यांतरादि विवंतरिक्षगान अन्यानपि कश्चित देश काल स्थान सर्वान हन हन विषम मेघ नदी पर्वतादीन अष्टव्याधीन सर्वस्थानानि रात्रिदिन पथग चोरान वशमानय वशमानय सर्वोपद्रवान नाशय नाशय परसैन्यं विदारय विदारय परचक्रं निवारय निवारय दह दह

द्वाविशत ओम चक्रधरायाः अहम् रक्षाम् कुरु कुरु सर्व बाधा हरणि देवे नमो नमः सर्व प्रकार बाधा शमनम् अरिष्ट निवारणम् कुरु कुरु फट श्रीम ओम कुब्जिका देवे ह्रीम ठस्वाहा शीघ्रम अरिष्ट निवारणम् कुरु कुरु देवी शाबरी क्रीम ठस्वाहा शारीरिकं भेदाहं मायां भेदय पूर्णम आयुः कुरु हेमवती मूल रक्षां कुरु चामुंडाये देवे नमः शीघ्रं विघ्न निवारणं सर्व वायु कफ पित्त रक्षां कुरु भूत प्रेत पिशाचान घातय जादू टोणा शमनं कुरु सती सरस्वती चंडिका देवी गलम विस्फोटकान विक्षित्य शमनं कुरु महाज्वर रक्षयं कुरु स्वाहा सर्व सामग्रीं भोगं सत्यं दिवसे दिवसे देहि देहि रक्षां कुरु कुरु क्षणे क्षणे अरिष्टं निवारय दिवसे दिवसे दुख हरणं मंगलकरणं कार्य सिद्धिं कुरु कुरु हरहि ओम श्री रामचंद्राय नमः हरहि ओम भूर्भुवस्वः चंद्रतारा नवग्रह शेषनाग पृथ्वी देवी आकाश निवासिनी सर्वारिष्ट शमनं कुरु स्वाहा आयुरारोग्यमैश्वर्यं वित्तं ज्ञानं यशोबलं नाभिमात्रे जले स्थित्वा सहस्रपरिसंख्यया जपेत् कवचमिदं नित्यं वाचां सिद्धिर्भवेत्तत्तः अनेकविधिना भक्त्या कवचसिद्धिश्च जायते शतमावर्तयेदत्सु मुच्यते नात्र संशयः सर्वव्याधिभयस्थाने मनसास्यतु चिन्तनं राजानुवशतां यान्ति सर्वकामार्थ सिद्धये अनेन यथाशक्ति पाठेन शाबरी देवी प्रियतां मम शुभं भवतु नवनाथ सिद्ध मंत्र ओम नमो सिद्धनवम अंगुष्ठाय नमः मुखाय नमो नमः शीर ब्रह्म धुधुक्कार शीरसे ब्रह्म तनम तनम तनम नमो

भक्ति सुधा इंटरनेट रेडियो स्टेशन पर सुनिए ईश्वर भक्ति के अमीट स्वरों का हिंदी भक्ति संगीत कार्यक्रम भक्ति सुमन। भक्ति सुमन सुनिए हर दिन दोपहर 2:30 बजे। श्रोते हो, भक्ति सुधाच्या इतर सर्व कार्यक्रमांची आणि उपक्रमांची माहिती घेण्यासाठी भक्तिसुधा.co.in या आमच्या वेबसाईटला अवश्य भेट द्या।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना, इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन और साजन मिश्रा जी का।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने।

आइए सुनते हैं हेमंत कुमार जी के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण जी का गीत। स्वर है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी।

श्रोताओं अब सुनिए संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने और इसे गाया है लता मंगेशकर जी ने।